0: चलो के बाद रहा मित्र बेची मुंह को चला जो काम भी
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.